0: सुपर्णु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM
0: तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanko 7 baje.
5: I'm Jay Kusatma. New Star Digital Color Lab. Tatha Dwaramai Offset Press. Solu Dutu Nagarpalika 5 Solukhumbu.

देखी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है नंबर को मिले थी है

मधुर से मयूर नाथ दिन से मधुर से मयूर नाथ दिन से मायल मस्त मौसम लाए नाथ दिन से जो भी हो नगरी हो सा सुंदरी हो मैले देखाएर मन

0: उजवलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

एशिया में कंट्रीज में हिंदी और ने जो राज्यों में है उसी करीब करीब नेपाल के आधार नेपाल हिन्दुस्तानी के जहाँ प्रति 1,00,000 जनसंख्या वाला

0: वर्ल्ड नम्बर वन टायर ब्रांड।
1: के तपाई झाड कम्मर घुड़ा गर्दन दुख्ने समस्या यूरिक एसिड बाथ रोग नशा संबंधी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
2: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओपीडी सेवा,
1: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
2: निशुल्क औषधि वितरण,
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
2: फिजियोथेरापी सेवा,
1: अकुपंचर सेवा,
2: योग परामर्श सेवा,
1: क्रियाकल्प सेवा,
2: पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा,
1: छार सूत्र सेवा,
2: जलौका सेवा,
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
2: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
1: विस्तृत जानकारीका लागि
2: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6096 98514-2463।

0: सीध हसरा प्रश्न विचार जीओ रेडियो नेटवर्क अहिले बिहानको 9 बज्यो
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
0: राष्ट्रको शान किसान
1: अ कम्प्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस।

0: Kondu FM, XA1.3 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
1: Soundcheck. Studio FM, studio time.
2: Time check
3: को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंडू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
2: अनुन मध्यान्नको 12 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: नेपाल के पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कंपनी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नासिमपाट काठमांडू।
1: सीधा कुरा प्रश्न विचार यह उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाण्डु में 90 मेगाहर्ज। यतिन्जेल हामीले विश्वविद्यालय में रिक्त उपकुलपति नियुक्ति का दरखास्त आह्वान नदी तथा खनिज जन्य पदार्थ उत्खनन मापदण्ड बमोजिम बनाने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देशन लगायत का खबर प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सहकारी नियमन प्राधिकरण में 11,600 सहकारी दर्ता को प्रक्रिया में रहकर प्राधिकरण ने सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने उद्देश्य देशभर रहकर बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार का रूप में संचालन करने सहकारी संस्था दर्ता को प्रक्रिया में ल्याउन लागेको हो। दर्ता का लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्था मध्ये झण्डे 3,000 सहकारी इजाजत पत्र प्रदान गरेको प्राधिकरणले बाँकी 8,000 को इजाजत भेरिफाई विवरण रुजू करने तथा अब पुगेका कागजात अध्ययन करने काम

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888022 र 9842880300।

0: गोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिसको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 500 खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ सूर्य एफएम सूर्य एफएम अब तपाईंले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: स्टार कलर लैब तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनो कुंज नगर पालिक पास सलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखने ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलर लैब तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब संग हमारा सेवा संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाई दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूबलाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेभ नुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झ्याल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेक्किनी पाल्चा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपी भूसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यूकी कलर कर सलेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप गैस सिलिंडर गैस सुलो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203389 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलेरी स्कूल खुम्बू
1: हो काकी के को सुंदर पटार हो यस्तो घर त उज्यालो देखिन्छ त
2: छोरीको बिहे आउनै लाग्यो त्यही भएर
1: के रे नानी त भर्खर 17 कि लाग्यो नि र
2: ओ बाबु अस्ट्रेलिया बस्ने केटो राम्रो भयो छ छोरी पनि खुसी नै थिए त्यसैले हामीले त बिहे गरिदिने निर्णय त गर्यौं
1: हेट काकी हजुरहरू यस्तो मोडमा पर्नु होला भन्ने मलाई लागेको थिएन छोरीलाई राम्रोसँग पढाए देश विदेश आफै घुमिरहेछन् नि विदेश जानै बिहे गर्नुपर्छ त हेर्नुहोस् काकी विश्वसँग पुगी बिहे गर्ने गराउने दुवैलाई 30,000 जरिवाना वा 3 महिना कैद सजाय हुन्छ उमेर नपुगी गरेको बिहे स्वत बदर पनि हुन्छ
3: यदि कोही महिलाको इच्छा विपरीत जबरजस्ती प्रलोभन देखाई प्रेम सम्बन्ध बनाई पद प्रतिष्ठा या पैसाको मोहमा पारेर या झुक्याएर राखिने यौन सम्बन्ध जबरजस्तीकरण हो कसैले 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मंजूरी नै लिएर यौन सम्बन्ध राखे पनि यो जबरजस्तीकरण नै हुन्छ यस्तो कार्य दण्डनीय छ खबरदारी गरौं कुनै कसैलाई यस्तो परेमा उजुरी गरौं र कानूनी कार्यवाही गरौं
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: 还有和着你所录 FM
1: 所录 FM 101.2 MHz 无论何必学过大地何不要变
2: 三切所录 FM Studio Time
3: Studio न्यू सपोर्ट दी बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका पांच सोलू कुंभू
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: 83 35 34 टेलीफोन 0385 20 43 नमुना दुधकुण्ड आयल फॉर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 98 62 82 13 87 नमुना दुधकुण्ड आयल फॉर्म स्टोर सँगै न्यू आई सब मोटर पार्ट्स एन्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाडी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाडी मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 98 62 93 06 46 नमुना दुधकुण्ड आयल फॉर्म स्टोर सोनु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गार्मा जोर बौद्ध सुलुखुम्बु
1: जंगल को छेउमा घर आँगन।

0: हैदराबाद हित बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखरी जिला को मिलन क्षेत्र
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्कल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करे भुक्तानी करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भिजन ओखलढुङ्गा
1: संपर्क नंबर 037590222 9852888022 और 9842808300

0: を反応しますうるさい。
1: सुरुंगिन देशी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य क्रम में माथुली सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटने गाय बस्ती चलाउन तथा आवक जावत करने विभिन्न स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना होने इस सूचना मार्फत अनुरोध कर अनावश्यक रूप में न जानु आशा बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखीजोस्ता समिति लंचनी हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका लंचनी हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदिबाट जोखिमबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं बाल बालिकाको चालचलन बानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यसको पहिले उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं बाल बालिकासँग नियमित सम्पर्क गरौं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकल हो तथा स्कूटर अब उत्तृष्णा को मूलन चीज
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्चन बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता बोट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888022 र 9842803300 Thank you.

0: 叫卖满彩花酒与速度 FM
1: सोलू FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
2: संचय सोलू FM स्टूडियो टाइम
3: 6 PM
1: साढ़े 6 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलू कुंभ

0: 대로 삶으로 퍼지도록하이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरंग जिंदगी से जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य कार्यक्रम में मथिली सुरंग ढूंगा खस्ने संभावना रहे तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटना गाई बस्तु चढ़ाने तथा आवक जावक करने पूर्व स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपनाउन होने इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानूस आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखी उपभोक्ता समिति बचाऊ बचाऊ लुम्चनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका लुम्चनी हिंसा को जोखिम में हिंसा समिति असंतोष पाठक परिचित नदीबा अभिभावक ने आपका छोराछोरी को व्यवस्था राख बाल बालिका को चार जन पानी बेहोला अतिभाविक परिवर्तन आयोग होने पाई उन्हींसंग तत्काल पूरा कराऊ बाल बालिका सह नियमित संवाद होने कराऊ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: Kepala Sekretar Kegiatan Bu.
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को नियंत्रित
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भद्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी उखलढुंगा खोटांग डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विस सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद करना एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
2: ऑनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
3: उखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिश्रम नगर पालिक 11 गोलमारी डिजाइन
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852888022 और 9842803000

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चेतना का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ भर्सन बजार में लन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित ढुङ्गा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842803300

0: बोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोनू दुतु नगर पालिका पास